0: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँमा पायल्स, फिस्टुला, फिसर लगायतका रोगहरूको दैनिक विशेषज्ञद्वारा परीक्षण, परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
1: विशेषज्ञ सेवाहरू, निशुल्क शल्यक्रिया सेवा, अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकद्वारा उपचार, छार सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको सुविधा, दैनिक ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा।
0: रोग लुकाएर नराखौ, समयमै परीक्षण गरौं।
1: थप जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ, फोन 01-4110-696।
2: स्वस्थ जीवनका लागि आयुर्वेद अपनाओ।
3: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
4: Where do we begin?
3: With international news you can trust, BBC News.
4: Journeys into the heart of global events.
3: And voices from around the globe.
5: The whole region is in the grip of a severe water crisis, and I am here to find out why.
3: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
6: सीधा कुरा, प्रश्न विचार, उज्यालो रेडियो नेटवर्क।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 9 बज्यो।

0: अब रारा चाउ चाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: ब्याङ्की खैमत बिले चौधरी एटीएम मोबाइल दे इन्टरनेट ब्याङ्की के गोप्य विवरण आरी खाई बिले तुई माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कल पर दिमो समय न्यो ठगदिल खामो ब्याङ्गर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय ब्याङ्की नील पर दिमो न्यो तने सतर्क तना ठद्रिक्या बचेना सिद्धार्थ ब्याङ्गर क्याले जनहितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
3: जसको नाम नै पर्याप्त छ
4: दिदी बहिनी
3: दिदी बहिनी
4: दिदी बहिनी
3: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ गर्न सक्छौ गर्न सक्छौ।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक 6 बज्यो।

रेडियो एनआरएन 99.1 नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी।